अकाल मूरत अजूनी शैपंगुर प्रसाद, जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक होशी सच दोए का जोड़ मांगो एक दाना

आठ पहर गुण गावा तेरी पनहा खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी कवन बधाई कह सको दे अंत गुणिता कर कृपा मोहे नाम देखो नानक दर सरिता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरिता परम सम्मान योग युग युग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों अज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दा प्रकाश दिवस आप जी मना रहे हो अमृत गुरबाणी दा कीर्तन आप जी ने बड़ी भावना श्रद्धा नाल गुरमुखां तो श्रवण कीता है। आओ आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दी टेक लैके बैठे हो सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास और गुरबाणी दा जो सिद्धांत है इस दी विचार आप संगत दे समक्ष अर्ज करनी है। एकाग्रता दी दात बख्शो धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप ही सिर ते मेर भरिया हाथ रख के भावना नाल अपने पवित्र बचना दी विचार आप ही करा लवो करो कृपालता गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विचों भाई साहब जी

परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी रात्रि वेले दे दीवान दी हाजरी भर रहे हो। सतगुरु जी ने जो गुरु सिख ले नेम बनाया है उस बनाई हुई मर्यादा दे अनुसार आप जी ने सोदर रहराज साहब जी दा पाठ गुरु सवारिया तो सरवण किया है। हजूर दे चरणा विच अरदास हुई वितर हुकम साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी खुरां दा उचारण किया होया आप जी ने सरवण किया है। तू काहे दोलह प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार। बड़े प्यारे ढंग नाल हजूर साडे अंदर नू टिका बख्श दे। आओ प्यारो जिथे आपां हर बुधवार पिछले कुछ समय तो गुरु नानक साहब जी दी पावन पवित्र बाणी जपजी साहब जी दी विचार करदे आ रहे सां। छे पौड़ियां हजूर दी पवित्र बाणी दियां जितनी कु मत गुरुदेव ने बख्शी उस अनुसार विचार कीती गई। मता कोई ए समझ लवे कि ए फाइनल है, जो कुछ आपां कह दिता बस इस तो अगे कुछ नहीं। मनुख दी मत थोड़ी है, ओ असगा सागर है। जिवें हुण एक कोई समुंदर विचों लोटा पानी दा भर लवे ते ए कही जाए कि मैं सारे समुंदर नू पानी दे नू भरे हुए नू लोटे विच पा लिया ते ए मनुख दी अज्ञानता है। जितनी कु तैनू लोड़ सी तू केवल अपने भांडे मुताबक भर सके ओ ता अजे असगा है। तेरे वर्गे पता नहीं कितने कु ओदे कोलों दाता लै सकदे। कहण तो मुराद जितने कु विचार कीती है ए जिन्नी कु भांडे नू गुरु ने सूझ पाई उन्नी कु आपां विचार कीती है। पर ओ इस तो अगे होर बेअंत है। आओ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जिन्हां दा आगमन पूर्वी पिछले दिनी बतीत होया जिन्हां दे सपुत्रां दे साके भी इसे मकीने दे अंदर आए ने। मैं एतवार अर्ज कीती सी हजूर दे चमकौर गढ़ी दे साके ने आरंभ कीता इतिहासक तथां दे नाल कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज 19 दिसंबर दी रात नू आनंदपुर तो चले ने। सतगुरु सरसा दे किनारे 20 दिसंबर दे अमृत वेले पहुंचे ने। हजूर ने सरसा पार कीती परिवार तीन हिस्सों विच वंडिया गया। इस तो अगे गुरुदेव रोपड़ आए ने 20 दी रात इत्थे टिके ने दिन ते 21 दिसंबर दी रात शामा वेले मेरे हजूर चमकौर गढ़ी विच पहुंच गए। ओ कच्ची हवेली सतगुरु उस हवेली अंदर अपना टिकाणा कीता है। उस रात सोदर रह राज साहिब जी दे पाठ कीते गए। कई दिनां दे भुखे भाणियां नूं अज जल पानी मिलिया। हजूर ने छकिया, गुरु के सिखां ने छकिया। रात बत्ती तोई मैं अर्ज कीती। कुछ विद्वान ए भी कह रहे ने कि धन गुरु कलगी वाले सच्चे पिता सारी रात उस अकाल पुरख दा शुकराना करदे रहे। गुरु के सिखां दी अपने हथी सेवा भी कीती। आओ प्यारो उस तो अगे जिवें ए बरतांत वापरदा जितनी कु सोच गुरु गोबिंद सिंह जी कृपा करके बख्शणगे आपां इस इतिहासक लड़ी नू अगे आरंभ करिए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा।

प्रभ मेरे का बड प्रताप, जिस मिले मन हुए आनंद, सो सतगुर कही है मन की दुविधा बिनस जाहे परम पद लहिया। बलिहारी गुर अपने द्योहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार, करत ना लागी वार। परम सम्मान योग चवर छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, अज किन्ने भागां वाले ओ शरीर ने जेड़े मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर ए जो ईसवी सन है इस दे 1998 दा ए साल, इनू बस डेढ़ घंटे बाद पौने दो घंटिया बाद आपां अलविदा कर देना है, ते उस 1999 नू जी आया कहना जिस दा खास करके सिख जगत दे अंदर बड़ा चाह ते उमा। दो पक्ष ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अंदर, अज ओ भी लोक होणगे जेड़े नशे विच गुट होणगे, जेड़े नच टप रहे होणगे, पर कुर्बान मेरे गुरु नानक साहिब तेरे तो लोक इस वकारां दी अग विच सड़ रहे ने, मेरे साहिब तू अपने नूं बांह दे के इस अग विचों बाहर कढ ले। हजूर ने बाणी विच क्या अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बांह पकड़ सतगुर निस्तारा। कुर्बान जाइए उस गुरु तो जिन्हें सानू बाणी दित्ती, जिसने कृपा करके सानू साध संगत दित्ती, जिस गुरु जी ने कीर्तन दी दात दित्ती, नाम दी दात दित्ती, ते गुरु रामदास जी ने इसे समय नू तक एक गल कही सी कि गुरु कोल भी केवल ओ बह सकदा है जिदे अंदर सच्यार अंदर कोई सत दी कणी है, जां जो गुरु नू इश्क करदा है। ते उत्थे ताही हजूर ने कहा सी कि कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। गुरु मेहरामत करे मैं अर्थ कर रहा अपने उस प्रसंग नू, वैसे मैं अज कुछ लाना अगे तोरना जो पिछले कई दिनों तो इस स्टेज तो आपां गुरु कलगी वाले दा पुरब मना रहे। गुरमुख प्यारे प्रबंधकां वल्लों हुक्म भी सी कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुरब आवे ते उस सरबंस दानी दियां रज के कथा कहानियां कीतियां जाण, खास करके मेरे बुजुर्ग बैनिकवाल साहब उन्हां वल्लों ए मैं हुक्म कह सकना उन्हां तो छोटा वा। आओ उस गुरु दियां भी आपां बातां अज करनियां ने जिथे अज 99 दा ओ साल भागां वाला आ रहा है। अज तो 300 साल पहलां आनंदपुर केसगढ़ साहिब जिथे अज साडा तख्त है, उस पहाड़ी दी चोटी ते खलो के हजूर ने हिंदुस्तान दे उच्च जातियां नूं ते जालम हाकमां नूं एक गल कही सी, जां की जात गोत कुल माही सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इसे वक्त ही मेरे साहब ने कृपान कढ के पहाड़ी ते कहा सी कि कदी समा आवेगा कि रत्न के संग रंक लड़ाऊं, शेरों के संग भेड पढ़ाऊं, कहन लगे सवा लाख से एक लड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं।
ध्यान रखना ए आवाज अज तो 300 साल पहला आनंदपुर की धरती तो उठी ते उस आवाज नू कोई दबा नहीं सकया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करन 99 आपा तकने पया इनू जी आया कह रहे हैं, पर प्यारियो ए 300 साल तकने 400 साल शायद साडे विचो कोई तके ते आए साल जा ए समय तां ही सफल है जे किते गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा विच अज अरदास कर दिए कि मेरे दातिया तेरा ए 300 साल खालसे दा साजना पुरब आ रहा है, तू कर निरामत इन्हां सुक्यां किरदियां विच अमृत दी झड़ी ला दे, तू विछड़िया नू मिला लै, ओही आनंदपुर दी धरती है जिथे कदी कुछ कागज ते लिख के चले गए सन बदावा दे के, पर अज कृपा कर कागज नहीं साडे तां मना उते बदावे लिखे हुए ने, शायद तू इन्हां मना नू धो दे ए बदावे दी जड़ी काल के उतर जाए ते दातिया महा सिंह दी तरह गोद विच तू ही सानू लै के कह दे नहीं होए अखां विचो नीर ना सट महा सिंह तू मेरा ही ने। गुरु बख्शिश करे प्यारियो जिथे आपा 99 दा साल आ रहा मैं कह के अगे तुरना वा अज साडी जिंदगी दा एक साल घट भी गया है, जिथे नू जी आया कह रहे हैं ना हजूर ने बाणी विच कह कहिंदे ने जदो मां दी गोद विच पुत्र हुंदा है मां लोरियां दिंदी है ते जदो उस बच्चे दा जन्म वाला दिन आउंदा है साल बाद ते असी रिश्तेदार साख संबंधी इकट्ठे करने आ ते कहने आ अज मेरा पुत्र इन्ने साल दा वड्डा हो गया है, पर भगत कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब विच कहिंदे ने नहीं मां ए ना क्या कर जन्म वाले दिन तू कहनी है मेरा पुत्र वड्डा हो रहा है कर कदी अपने सिर ते झाती मार तू गोदी विच लै के लोरियां देनी है के जन्म दिन वाले दिहाड़े नू शानल मनानी है, पर नहीं मां ए वड्डा नहीं हो रहा ए असल विच दिनो दिन घटदा पिया है, असल विच साडी जिंदगी विचों भी एक साल अज घटिया नहीं। हजूर ने बाणी विच कहा जननी जानत सुत वड्डा होत है, पहली पंक्ति ए भगत कबीर साहब जी दी गुरु ग्रंथ साहब विच जननी जानत सुत वड्डा होत है इतना कु ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है, मोर मोर कर मेरा मेरा कह के अड़क अड़क लाड धर किन्ना प्यार करनी है पर

कि तू अपने घर जाएगा नहीं, लोग दौलत लैके मुड़ गए, तू अजे भी पिछे तुरिया उन्हें। ते भाई बुढ़े दा अगो उत्तर सी दात्या, जिन्ना लोकां दे घर ने घरां वाले तां अपने घरां नू चले गए, मेरा घर तां उदण दे मुक गया सी जिदण दा तू गुलवकड़ी विच लै के प्यार दिता है। घरां वाले घरां नू चले गए, बुढ़े दा ते घर ही गुरु नानक है, दस तेनू छड़ के केड़े पासे जाऊं। जदों इन्ने शब्द कहे ना, सतगुरु ने बुढ़े नू फिर छाती न लाया, कहन लगा दात्या तेरे तो विछड़ के नहीं मैं रह सकदा। उत्थे जड़ी पंक्ति मेरे

ओहं पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लइया पौ मुकह गुर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै

परम सम्मान योग जुग जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी होरां पासों सरवण कीतियां ने। कल दा दिन जो बतीत होया है, कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब से ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदो आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलक्षण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है, इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं, शब्द वरतदे ने ए सत्रिया बत्रिया गया है, 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने, ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है, जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने, कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नू गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना ओ कहा होया केवल तर्क दी बिरती वाला लगेगा, ते जदो प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास दी कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है, सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे हुए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए की तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का, ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए कि पिंड बासर के 1479 नू होया। 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरत रहा, अजे वह गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक यह कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा है जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान

तेरे दातार ने कृपा करके खंडे बाटे दे अमृत दी दात दे के सानू पांच ककारां दी रैत दृढ़ कराई ते चार वज्र करैतां तो बचाया सी। आओ आपां बाणी वल चलिए थोड़ा जिहा। साहिब दा एक शब्द असीं पढ़ने के हजूर ने उस शब्द दा सरलेख दिता है गुणवंती। ये तीन शब्द इकट्ठे हुंदे ने, एक सुचजी, एक कुचजी ते तीसरा शब्द हुंदा है गुणवंती। ते उस गुणवंती शब्द दे अंदर हजूर ने यही सवाल कीते ने। उस शब्द आरंभ हुंदा है कि जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। अर्थ बड़े स्पष्ट ने कि जदों कोई गुरु का सिख मिले ते साहिब कहिंदे ने मैं झोके ओहदे पैरां नूं हथ लाना वा, ओहदे चरणां दी धूड़ मस्तक ते लाना ते देखो सानूं उत्तर मिलेगा कि गुरु दा पल्ला केवल हुक्म मन के फड़िया जांदा। कहन लगे जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो, आखा बिरथा जी की। आखा बिरथा, बिरथा दा अर्थ हुंदा अंदर दी पीड़ा, अंदर दी लोड़, अंदर दी तड़प। कहिंदे ने मैं अपने अंदर दी बिरथा दसना पिया वा। आखा बिरथा जी की, गुर सज्जन दियो मिलाए जियो, हे गुरु के सिखड़े गुरु के सिखा, तैनू गुरु मिले है ते मैं तेरे चरणा विच अपने अंदर दी बिरहा दसना वा, मेनू कृपा करके गुरु सज्जन मिला दे हो। किते को जी तड़प होवे गुरु सज्जन नू मिलदी। आखा बिरथा जी की, गुर सज्जन दियो मिलाए जियो। फिर किन्ने सोई दस उपदेशड़ा, मेनू ओ उपदेश दस, मेरा मन अनत ना काउ जाए जियो। जेड़ा मन रोज तड़पदा भजदा पिया है एक हजार उपदेश सुना दे, मेरा मन किसी दूजे पासे जाई ना। कहन लगे फिर अगली तुक है कि जे मेनू एहो जिहा उपदेश दस दे ए मन अनत ना काउ जाए जियो। अगली तुक ए मन तै कु देव सा, मैं अपना मन तेनू दे दिया, मैं मार्ग देखो बताए जियो, मेनू दस ता सही मेरे गुरु दे घर नू रस्ता की हो जा जांदा, किवें तुरना मैं गुरु दे मार्ग ते। ते मैं बेनती करा ए शब्द केवल गुरु जी दे अंदर दे आम कवियां वाले ख्याल नहीं, ए तुर आत्मा दी आवाज है। ते जे सिखा अज तू इन्हां नू मन लवे किते तेरे मन विच ना तड़ पैदा होवे किते कि मैं अपने सतगुरु गुरु कलगी धर तेरे मार्ग ते किवें चला। उथे ता तरले करके पुछदे पए ने सानू मार्ग दसो, ते इथे गुरु के सिख रोज पुकार पुकार के कहिंदे ने लुकाई आ मार्ग गुरु दर नू जांदा, इस मार्ग ते चलना शुरू कर दीजिए। साहिब कहन लगे ए मन तै कु देव सा, मैं मार्ग देहो बताए जियो। हुण अगला वचन कीता, कहन लगे हकीकत एई कि मैं बड़ियां थावां ते भटकिया वा, खौ आया दूरों चल के मैं तक्की तो शरण आए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। तुसी कृपा करो मैं बड़ी दूर तो चल के आया, हुण देखो गुरसिख दा उत्तर की। जेहड़े गुरसिख नू पुछिया आप जुड़िया सी ओने उत्तर विच इको ही गल कही, कहन लगे भरावा जे इस मार्ग ते चलना ही, जे ए मार्ग तू पुछना है, सब तो पहली गल अपने मन दियां टुचरां नू त्याग दे, अपनी मन जी खुजत नू छड़ दे। कहन लगे इत मार्ग चले भाईड़े, ओ मेरे भरा जे इस मार्ग ते चलना चाहना है तू पुछना है कि मैं मार्ग देओ बताए जियो। इत मार्ग चले भाईड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, ते अगली तो के त्यागे मन की मतड़ी वे सारे दूजा पाओ जियो। मन दी मत नू छड़ दे, अपनी खौमे दी पंड नू सट दे, ते जो गुरु तेनू कहिंदे ने ओनू सत बचन करके मन ताए मार्ग लभने। इत मार्ग चले भाईड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी वे सारे दूजा पाओ जियो। ते जदों मर्यादा मन लेगा ना इयों पावे हर दरसावड़ा, न लगे तती वाओ जियो। इस मार्ग ते चलिया खरी दर दरसावड़ा ओहदे दर्शन हुंदे ने, तेनू तती वाह नहीं लगेगी। तीसरा प्रमाण अर्ज करा के हुक्म मन के मार्ग ते चलिया जाने। हजूर ने एक बचन कहा, असी पढ़ने बड़ी बारी हजूर कहिंदे ने असल विच गुरु का सिख ओ वे, गुरु का रिश्तेदार ओ है, गुरु का पुत्र ओ है, गुरु का मित्र ओ है। महाराज कौन?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ

एक बचन क्या है उन्हां दा एक श्लोक है, छे उदाहरण एक श्लोक विच दे गए ते निक्के जी छे उदाहरण दे के एडियां वड्डियां रमजा पा गए। उन्हां दा बचन हुंदा है वेख कपा है जे थिया, बाबा फरीद जी, जे सिर थिया तिलां का मादे अर काग दे कुन्ने कोयलियां। ते अगला बचन है मंदे अमल करेंदियां ए सजाए तिना। हुण इह श्लोक दे अर्थ करके तुसी देखो, छे उदाहरण सिर्फ दो तुकां भी दे दित्तियां। वेख कपा है जे थिया, कहिंदे ने तू माण करके तुरिया फिरना मैनू किसे पुछना नहीं, इस कपा ने केड़े माड़े कर्म कीते ने, वेलने विच वेलिया रूह पिंजनी विच पिंजिया, तक चरखे तेनु कत्या परत के एदा कपड़ा बनाया, कट्या कुट्या तेनु खुंभ चढ़ा के रंगण लगे, कपा दा की दोष है, कपा ने इना दुख पालिया। वे कपा है जे थिया जे सिर थिया तिलां, के तिलां दा की दोषी, कहानी विच पीड़े गए, गन्निया दा की दोषी, कोलू विच पीड़े गए, आ देख कोलियां दा की दोष है, पहला लकड़ साड़ के कोले बनाए, परत के अंगीठी विच रख के फूकिया, ओ सजना इस हांडी दा की कसूर जेड़ी रोज अग ते बल दीए, ए छे बेदोषे ने ते एनी सजा मिलदी पई है, ते जेड़ा मंदे अमल करना तू कादे दावे करी बैठा। बाबा जी दे बचन ने के वेख कपा है जे थिया जे सिर थिया तिलां का मादे अर काग दे कुन्ने कोयलियां, मंदे अमल करेंदियां ए सजाए तिना। एक बचन असी पढ़ने आ, फरीदा दर दरवाजे जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल, ओने दोषा मारिये खम दोषा दा क्या हाल, घड़िया घड़िया मारिये पैरी लै सजाए सो खेड़ा कड़ियाल, ज्यो दुखी रहन विखा है। गुरु अर्जुन साहब नू पढ़ो, कहिंदे ने पापी कर्म कमाम दे, असी कहिंदे आ कर्मा नू किसे पुछना नहीं, पापी कर्म कमाम दे, कर दे खाए खाए नानक ज्यो मथन माधाणिया त्यों मथ है धर्म राय। एक बाबा जी दा बचन है पौड़ी, असी पढ़ने आ भाई गुरदास जी दी, ते मैं उस दिन अर्ज कीती सी जदो गुरु नानक साहब दी रहमत वर्ष दी है ना, उदो फिर विरोधी भी चरणा विच आ चुकदे ने। हजूर मक्के गए ने, सतगुरु काबे दे नेड़े गए ने, पर जदों हजूर पहुंचदे ने, मक्के दी धरती दी गल करने आ, काबे दी धरती दी गल करने आ, गढ़ बगदाद निवान दी गल करने आ, पहला अपने पैरां दियां ठोकरां मारदे ने मेरी सच्ची सरकार नूं, ते जदों फिर अंदर दी रहमत वेखदे ने ना, पैरां दियां ठोकरां मारन वाले उसे बापू दे चरण पकड़ के कहिंदे ने, आप तां तुर चलिया घट्टो घट अपने चरणां दी खड़ां वी दे जा। तुसी पढ़दे हो लत्तां मारन वाले चरण पकड़ के कहिंदे ने, धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई। उत्थे इक प्रश्न कीता, ते ओ प्रश्न कला हिंदू ते मुसलमान लई नहीं सी, क्योंकि कत्तक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग। मैं उस विषय वल फिर तुरांगा जिहड़ा अर्ज कर रहा पिया बल दी कोई चिखा दा। उत्थे दोनां लई इक सवाल उठिया सी, ते ओ शब्द सी भाई गुरदास दी रचना, तुसी सारे पढ़दे हो, ओ रचना है कि पुछन गल ईमान दी, आखे उन्हां ने गल पुछी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, इकट्ठे होके बाबे कोलो धर्म दी गल पुछन आए। एदा मतलब वो इन्ने कु प्रभावित हो गए कि गुरु नानक साहब तो पुछन आए कि तुसी सच दी झलक पई तुहाडे कोलो, सानू दसो धर्म की है। पुछया, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया लख न सकै कुदरत कोई, पुछन फोल किताब नू, हिंदू वड्डा के मुसलमनोई, गुरसिखो उस आवाज नू भुल्यो ना जेड़ी अरब दी धरती ते आई सी। हुण इहदा मतलब ए नहीं मैं सिख बन गया, मैं ककार पाले ते मैनू लसंस मिल गया, जितने मर्जी कु कर्म ने मैं करी जा। क्यों नहीं अपनिया गलतियां नू स्वीकार दा अपना अंदर। गुरु जी दे सामने वो ईमान दी गल पुछी, की धर्म बार दे चिन्हां दा नाम है, कि धर्म बार दे अडंबर दा नाम है, पुछन फोल किताब नू, हिंदू वटा के मुसलमनोई, अगो कहिंदे बाबा आखे खाजियां शुभ अमलां बाजो दोवें रोई। हुण दोवें रोई दा मतलब कल्ले ओ नहीं सन प्यारे, ओ जे साडे पल्ले शुभ अमल नहीं ते की सिख दे पल्ले रोना नहीं पाएगा। शुभ अमल बाबा जी दा बचन सब लई सांझा है। मैं बेनती जड़ी कर रहा, बलती कोई चिखा है

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज, हम अवगुण

दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रणासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु सत सतगुरु तिलक सत लागे सो पैतरे गुरराज गुर जगत।

शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो तल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

इस वास्ते चाणक पंडित ने एक बहुत वड्डी गल कह दी है, क्योंकि चाणक ने साडे देश दे सब तो पहले नीति दर्पण लिखे, जिन्हों चाणक नीति दर्पण कहते हैं। राजनीति दे उत्ते जिहड़ा ग्रंथ है सब तो पहले लिखे है चाणक ने, फिर लिखे है भरतरी ने। कुछ आलम ऐसा भी कहते ने कि राजनीति का एक पुराना ग्रंथ होर भी है, वह बिदर का लिखा होया, वह आम प्रचलित नहीं, आम लोगों की नजरों के भी नहीं, पर चाणक ते भरतरी का लोगों की नजरों के थले लोगों ने पढ़िया। चाणक यह कहता है जिहड़ी गल तू अपने दुश्मन नू नहीं कहना चाहता ना, छुपाना चाहता है, वो गल अपने मित्र नू भी ना आख। राजनीति, क्योंकि उन्हें नीति का ग्रंथ लिखिया, धर्म का तो लिखिया नहीं। चाणक ऋषि जरूर होया, संत जरूर है, लेकिन राजनीति का महापंडित सी, बहुत वड्डा पंडित। उन्हें यह आख्या भी जिहड़ी गल तू अपने दुश्मन नू नहीं कहना चाहता, उस तो छुपा के रखना चाहता है, मित्र नू भी ना आख। भई क्यों? कोई भरोसा नहीं। वो कहिंदा मित्रता शिखरता ते पहुंच के दुश्मनी बन जाती है, ते कई दफा दुश्मनी शिखरता ते पहुंच के मित्रता बन जाती है। इंज आख्या। और अक्सर नवे सदी ऐसा होंदा है कि जिहदे नाल बहुत गूढ़ा संबंध है, बहुत गहरी चोट वही पहुंचा सकता है, और ओपरा नहीं पहुंचा सकता। ओपरे नूं की पता है, दूजे तीजे नूं की पता है, अपना जितनी गहरी चोट पहुंचा सकता है दूजा तीजा नहीं पहुंचा सकता। राम तो भी लंका नहीं ढाणी जानी सी जे अपना ना आता, उत्थे इतनी मैरिज करते हैं जो विभीषण ना आता। यह हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है, क्योंकि अपने नूं सब कुछ पता है, ते अपना जब दुश्मन होवेगा तो वह इतनी गहरी चोट पहुंचाएगा, ओपरा नहीं पहुंचा सकता, ओपरे नूं तो कुछ पता ही नहीं है। इस वास्ते यह हकीकत है, बहुत वड्डी जो है सच्चाई है, कि दुश्मन की तस्वीर अखां विच क्यों समा जाती है, लाजमी किसी वक्त मित्र रहा होगा, मित्रता दुश्मनी च बन गई, तो दो ही तो याद आउंदे ने, या मित्र याद आउंदा या दुश्मन, दूजा तीजा नहीं याद आउंदा, दुश्मन नाल भी संबंध है। तुसी बगौर मुताला करके जो है बैठना, कभी सोचना कौन याद आउंदे ने, या मित्र याद आवणगे या दुश्मन याद आवणगे, दुश्मन नाल भी संबंध है, आंतरिक संबंध है, दिल का संबंध है। दिल मित्र नू याद करता है, दिल दुश्मन नू भी याद करता है। इस वास्ते दुश्मन नाल भी संबंध बनिया रहिंदा है, मित्र नाल भी संबंध जो है बनिया रहिंदा है, ते संबंध कारण करके उहदा अक्स अखां दे चाहुंदा है। शायर लोग ते कहिंदे रहे सन, पर हुण इसकी तस्दीक कर दी है विज्ञान ने, कि अखां विच भी कोई समा सकता है, कोई जो है वस सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते परमात्मा हुण मेरी अखां विच वसिया होया है। भगत कबीर ने भी ऐसा कहा है, दोए दोए लोचन पेखा हाँ हर बिन और न देखा। ते कबीर नू पुछिए इहदा सबूत की है, तेरी अखां विच है, इहदा की सबूत है? कबीर कहते ने सबूत मेरी अख तो बिना होर कोई सबूत नहीं, मेरी अख ही सबूत है। नैन रहे रंग लाई अब बेगल कहन न जाई। कहते अखां विच जद पुत्र होवे तां ममता टपकदी है, अखां विच जद पराया रूप होवे तो वासना टपकदी, अख ही दस दिंदी। कबीर कहते मेरी अख ही सबूत है, होर कोई सबूत नहीं। अखां विच जद पराया धन होवे तो लोभ अखां विच टपकदा, दस दिंदा, लाजमी दस दिंदा। और यह हकीकत है, जद दिल दिमाग विच दुश्मन वसे आवे तो खिमा करनी अखां ही दस दिंदियां ने, दृष्टि दस दिंदी है। बंदा कह देना इंज घूर घूर के क्यों देखता है, हुण घूर घूर के मां भी बच्चे नूं वेखदी है, घूर घूर के मित्र भी मित्र नूं वेखदा है, लेकिन खिमा

0: आम दाम दंड सजा दो मारो। बेसर स्टेटा ने इस डंग का भी किया, जलूस नहीं निकल दिते, तशद्दुद किए, लाठी चार्ज हुई, गोलियां चलियां, सब कुछ, शाम दाम दंड ते तेल पाड़ो। तो मैं इतने देखता पाया गुस्ताखी माफ, एक दूजे के खिलाफ दूजा, तीजे के खिलाफ तीजा, चौथे के खिलाफ, यह सिलसिला नहीं चाहिए। हूँ इस वक्त जो बागडोर पंज सिंह साहबान ने संभाली है, तो हूँ तुम पूर्ण तौर पर इन्हों सहयोग देना है। कितनी मैरिज कर दें पूर्ण तौर
1: पर
0: मैं ये भी अर्ज करा थी कि पंज सिंह साहबान भी आखिर मनुख ने, इंसान ने, किसी थान भुल होंगी दिखाई देवे कि हलेमी के जज्बे बिरादराना जज्बे गल करो, एक एक टुट के पाओ तुम उन्होंने और कौड़े लफ्जा नाल पेश आओ, यह सिलसिला नहीं चाहिए। इतनी मैरिज कर दें फिर यह भी नहीं वो लीडर ठीक है, वह नहीं ठीक, वह ठीक है, वह नहीं ठीक, इतने तुम पाड़ दाड़ करते जाओ। और पाड़न वाले इतने सैकड़े आए हुए ने स्पेशल पेड़ जिन्हों का काम ही यही है, धंधा ही है, राजनीति का एक गुण है। शाम दाम दंड भेद भेद पाओ, भरा भरा नाल तोड़ो, विच पाड़े पाओ, राजनीति का एक गुण है। तो सब क्षमा करनी भेद पाए। हूं तो मैं इतनी अर्ज जरूर करा कि फलाने के नाम का अकाली दल, फलाने के नाम का अकाली दल, ये सारे ना हटा के बस सिर्फ अकाली दल, क्योंकि फिर भी पाड़ा पैना है, ये भेद बह रहना है। और गल समझ दे चाहेगी कि वाकई एकता है, वरना राजनीतिक सफल हो गए बे टुकड़े टुकड़े किया। सिख क्षमा करनी, किधरे किधरे मैं देखदा टुटे हुए ने, पाटे हुए ने, और राजनीति ने पाड़े है, और ये चारे गुर मौजूदा राजनीति ने वरते ने। इतनी मैरज कर रहे किधरे किधरे वो शरण पे ने, क्योंकि मैनू भी कुछ चंगे चंगे प्रतिष्ठित बंदे आके हाथ जोड़ के कहने लगे, गैनी जी तुम कथा वाचक गुरबाणी की कथा करते हो, तुम कि पुठे पासे पै गए। तो मैं जिस पासे मैं पिया, एक क्या पुठा पासा जाता कितने है, पहले मैं दस दे कि मंजिले मकसूद की है, एदा टिकाणा की है। जो कुछ मैं कह रहा इतना ही है ना कि कौम नू अपना हक मिले, कौम ते तशद्दुद होया, जुल्म होया, कौम नाल बेइंसाफी हुई है, तो यही कुछ मैं कह रहा। नहीं जी नहीं, तुसी कथा ही करते रहो जी, वही ठीक है, वही ठीक है। तो मैं उन्होंने कह दिता, मैं तो तुसी चाणक का पहला गुरु वरत रहे हो, यह नहीं चलेगा मेरे तक। शाम शरण पै जाओ, हाथ जोड़ के गल करो, हलेमी नाल पेश आओ। तो दूसरा चाणक ने राजनीति का गुण दसिया है, मैं फिर अर्ज करा दाम। तो मैं डर है क्योंकि अज तक दाम दे हेठ कई दिखते रहे, बड़े बड़े दिखते रहे, तो नोटा के थब्बे इन्हों राजनीतिकों को बथेरे ने, बड़ा सिलसिला इन्हों कोई कमी है, इन्होंने लखा के ढेर अगों ला लेने। और अज तक राजनीतिक दिखते रहने। तो मैं बाबा दीप सिंह के इस स्थान पर बैठ के थोड़ा जहा माण करता, तो माण में चोट ना लगे कि पंच सिंह साहबान भावें लखनपति तो नहीं, तो लंबी चौड़ी इन्हों की कोई जायदाद नहीं है, कोई ऐसी गल नहीं है, पर मैनू उम्मीद है कि सिंह साहबान अगर दो लोगों की दौलत भी इन्हों के कदमों रख दी गई नहीं बिकणगे। दरबार साहब के अकाल तख्त की मान मर्यादा बना के रखे, मैं पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। राजनीति का यह गुण है, गुर है कि दाम नाल खरीदो, क्योंकि मैं इस वास्ते विचार मैनू बुरी के रस्ते च दो तीन बंदे जिस ढंग के मैनू मिले, तो जिस ढंग की उन्होंने गल की थी, और एक गल दिल्ली तो ही आरंभ हुई है मेरे नाल, मैं तुम किड़े पुठे पासे पै गए। तो मैं उन्होंने यह कह दिता मैं कि तुम दो गुर मेरे सामने वरत लेने, तो तीजा भी वर के देख लेना, कोई सजा देनी है तो सजा दे देना। तो वह भी फिर मैनू पता चल गया रात में भी थानू गैनी जी अरेस्ट करने आ रहे हैं। मैं चलो

रोज अमृत सिंचन नाल भी निम का सहज नहीं जाता, भाव सुभा नहीं बदलता। सहज का अखरी अर्थ सुभाव, क्योंकि जिहड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जिहड़ी गल सुभाव च शामिल होवे वह मनुख सहजे कर लें, जिहड़ी गल सुभाव च शामिल ना होवे जे वह करन दी कोशिश भी करे तो वह करन लग्या उसनू उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभा नाल शामिल हुंदा, सहज सुभाए होए सो होए। सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जिहड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है, कहिंदे निम नूं कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नूं अमृत तां बाहर पाया गया है ते सुभाव उनके अंदर है। इस तरह हजूर कहिंदे ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन उपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए, ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़, तन दा कपड़ा मैला हो जाए, साबण दी जरूरत है। हजूर कहिंदे

पिंड है जो कुछ ब्रह्मंड दे चाहुंदा उस पिंड दे चाहुंदा जे परमात्मा इस ब्रह्मंड दे च है तो परमात्मा इस पिंड दे च है जे तूफान इस ब्रह्मंड दे च ने तो तूफान इस पिंड दे च ने इतनी मैं अर्ज कर रहा ऐसा है। दूसरी अर्ज होर कि जिस तरह इंद्रियां दे उत्ते वख वख तूफान आउंदे ने मन दे च भी किसे वक्त एक रोग की प्रधानता आती है और वो प्रधानता बहुत गिणती दे चाहती है बहुत सारे मनुख उसकी लपेट दे चाहते हैं छूत की बीमारी है बिल्कुल कहने ये कोल ना बैठो कोड़ छूत की बीमारी है ये तपे दिख और इस तरह के होर चेचक इत्यादि बहुत सारे मर्ज ये बीमारियां एक तो दूजे नू लगदी हैं दूजे तो तीजे नू लगदी हैं यकीन जानो कुछ मानसिक रोग भी ऐसे ने छूत की बीमारी है एक तो दूजे नू लगदियां ने दूजे तो तीजे नू लगदियां ने तीजे तो चौथे नू लगदियां ने ते इस वक्त ये जिहड़ी बहुती मनुखता है किहड़ी बीमारी की लपेट दे च है अज दा ये जिहड़ा वाक आया इस नू आधार बना के मैं विचारां थोड़े सामने रख रहा हौं में अहंकार इहदी लपेट दे च बहुत सारी दुनिया है बहुत सारा जगत है इंज नहीं कहना चाहिए कि सारे ही बहु गिणती दे च बहुते इसे दी लपेट दे च कुछ गुरमुखां नू छड़ के कुछ भगतां नू छड़ के कुछ अभ्यासियां नू छड़ के ते अभ्यासी भी ओ जिन्हां दी साधना तोड़ निभी है जिहड़े अभ्यास करदे पए ने उहनां नू अभ्यास करन दा अहंकार हो जांदा है जो सेवा करदे पए ने उहनां नू सेवा करन दा अहंकार हो जांदा है जो कीर्तन करते ने उन्हां नू कीर्तन करन दा अहंकार हो जांदा है जो कथा करते ने उन्हां नू कथा करन दा अहंकार हो जांदा है जो गुरुद्वारियां दी संभाल करते ने उन्हां नू सेवा संभाल दा अहंकार हो जांदा है वरस के ए अहंकार ए हौ में गुरु अमरदास जी महाराज के कथन अनुसार इस वक्त जगत रोग है जगत जिवें जगत गुरु आउंदे ने जगत रोग जगत बीमारी सारे जगत दी बीमारी सारी दुनिया जिस दी लपेट च होवे कुछ एक नूं छड़ के जो जो दी से सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी अहम भाव हौमें दा मतलब है मैं हां और मैं होवा तू नहीं है तू कौन है मैं हां मैं होवा अजोके दौर दी बहुत वड्डी बीमारी पर ये ना समझ लेना बाकी जिहड़ियां चार बीमारियां ने ओ नहीं ने ओ दबियां होईयां ने ओ उकसाहट नाल पैदा होंदियां ने वक्ती पैदा होईयां चलियां गईयां जिवें जुकाम लगया चला गया जिवें मत्था दुखण आया सवेरे घंटे बाद ठीक हो गया हुण ठीक है एक अद गोली लई ते मत्थे दी पीड़ ते चली गई पर एक अद गोली नाल शुगर थोड़ी जांदी कैंसर थोड़ी जांदा है कि जांदा है तपे दिख थोड़ी जांदा है ये लंबा इलाज होमे एक गोली नाल जान वाली नहीं एक पुड़ी नाल जान वाली नहीं ये लंबी बीमारी है होमे दीर्घ रोग है दारू भी इस ये दीर्घ रोग है ये लंबा रोग है ये लंबी बीमारी है एक गोली खांदे नहीं कोई मत्थे दी पीड़ा थोड़ी है गोली खादी ते दूर हो गई इस तरह की गल नहीं है। कई ऐसे ने जो लंबी बीमारी नू छेती खत्म करना चाहते हैं भाई नहीं एक गोली खाइए तो ठीक हो जाए और फिर संता महानता दे डेरिया और इस तरह के डिंबी गुरुआ के चक्कर च पैंदे ने भाई ऐसा मंत्र दे शाम तक ही गल बन जाए तो राधा स्वामी देंदे ने आओ बस 10 मिनट साधना करो अनाहद नाद वजन लग पाएगा ते कन्ना दे उंगलियां देख ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਪ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸੰਤ ਜਨ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਪਖੰਡ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋਵਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। मंत्र तंत्र अकाली मैनू परचे वंड रहा सी ते परिक्रमा ची ते उचेचा मैनू आके दिते उसने

पाओ निरंकार भव खंडन साव सुख नाव निध देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सलाही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर ख्याया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा थान दिया सुखदाता निखुट ना कब ही जाए आनंद भया सुख सहज समान सतगुर मेल मिलाई मानु नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी

प्रथम सनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नु सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दोई ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होता। लोभ दा स्वभाव है कि पूरा होता ही नहीं, होता ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहता है, अधूरा ही रहता है। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावा, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होता। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना, तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना, मंगता, तीजा साधन खोना, लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे ए तीन साधन है। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने किरती, जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक, भिखारी, और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार दे च ए तिन्ने मौजूद ने। ए ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं है। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खोख है, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राहीं व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया,
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगनी, मंगना है।